0: want to like a goal too? On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Goal 2.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

0: Breaker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
3: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
4: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
5: पूछ लो सर।
4: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
5: फरवरी सर।
6: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
7: Yeah. India ke top 1% starts this September on Star Plus.
4: India ke top 1% sirf degree nahi, dimag bhi jeetega.
0: Catch the legend, Ravi Sharma, every weekday morning at 9 a.m. Like a radio.

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?

0: मेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। न्यू हिट्स ऑन लाइका रेडियो।

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
2: Function रखा हुआ है।
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
2: Your wake up call. This is Kajal on Breakfast. Leica Radio.
4: Let's-

0: Excelsior!
1: Good morning. संगीत का एक और सुहाना सफर, आप बन जाइए मेरे हम सफर। स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। तो बहनों भाइयों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सब की ओर से धन्यवाद दें काजल को। शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। आज सोमवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 10 तारीख, बहुत लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, किसी का जन्मदिन, किसी की शादी की सालगिरह, कोई याद कर रहे हैं अपने बिछड़ों को, कोई भाई याद कर रहे हैं अपने पुराने दिनों को, इतिहास को, गुजरे जमाने को। लेकिन साहब, मैं आपको वीकेंड पे बहुत याद करता हूँ, जब आपके साथ नहीं होता हूँ और जब सोमवार को आके मिलता हूँ, तो बताना चाहता हूँ कि जिन पे होता था मंजिलों का हुमा, नहीं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर मेरे चैन आ नहीं सकता, तुझे बगैर मेरे चैन आ नहीं सकता, और मेरा जवाब तू कहीं से ला नहीं सकता, गारंटीड मेरा जवाब कहीं से तू ला नहीं सकता। हजार पर्दे भी डालो अगर बनावट के, तो दिलों की बात को चेहरा छुपा नहीं सकता। तो बहनों भाइयों, शुरू करें संगीत का सुहाना सफर।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: सौरभ दी। जरूर आनंद बख्शी की कलम से जन्म हो गई ये गीत भाई, जहां वो हिंदी फिल्मी गीतों में पंजाबी को ऐसे फिट कर देते थे कि लगता था उसके स्थान पर कोई और दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता। दो गीत भाई बैक टू बैक हमने आपको सुनवाए, दैट्स हाउ वी स्टार्ट द प्रोग्राम। और पहला गीत उसमें भी सावन का जिक्र था, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मोहम्मद अजीज ने गाया और दैट वाज फ्रॉम द फिल्म निगाहें। और ये गीत जो अभी आप सुन रहे थे, जाना पहचाना बहुत पुराना, आपकी कसम फिल्म से लिया था, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में था। अब भाई सावन मास जो है, श्रावण मास शुरू हो चुका है और कई श्रोता कहते हैं जी आज दूसरा सोमवार है श्रावण का, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अभी तो 13 तारीख को शुरू होगा श्रावण। तो भाई आपको बता दें श्रावण मास तो चल रहा है लेकिन इसकी शुरुआत जो है उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में अलग अलग समय पर होती है। देखिए जैसे कि आप बताइए पूर्णमासी का क्या अर्थ निकालेंगे आप, क्या मास पूर्ण हो गया और अमावस यानी अर्धमास अमावस, अब अमावस आएगी तो आधा मास गुजर गया। जब अमावस आएगी मेरा ख्याल है कि आज अगर द्वादशी है या त्रयोदशी है तो भाई श्रावण मास की शिवरात्रि भी आएगी और उसके बाद अमावस आएगी तो अर्धमास, और फिर जब पूर्णमासी आएगी तो पूर्ण चंद्रमा होगा तो मास पूर्ण हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां से मास जो है वो पूर्ण नहीं होगा बल्कि आधा मास गुजरेगा। पश्चिम भारत में शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ होता है और उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष से। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं अंधेरा पक्ष जो है, जिसमें चांद छोटा होता चला जाता है हर अंधेरे में जाकर के जो समापन होता है अमावस आती है। और इसी तरह शुक्ल पक्ष जो है उसमें चांद निकलना शुरू होता है और पूर्णमासी तक पूरा चांद निकल आता है और मास पूर्ण हो जाता है। भैया कालगणना सेम है, बस कोई मास को अमावस से शुरू करते हैं, कुछ लोग पूर्णमासी से शुरू करते हैं, पर श्रावण मास जो है अपने मौसम के हिसाब से इसी इन्हीं दिनों में आता है। और आपको बता दें कि ये सनातन कैलेंडर की खास बात यह है कि मौसम जब बदलते हैं तो तीज त्यौहार उसी मौसम में आते हैं, यानी कभी भी दिवाली गर्मियों में नहीं आएगी और कभी भी जो श्रावणी है यानी रक्षाबंधन है ये जनवरी फरवरी में नहीं आएगा, सर्दियों में नहीं आएगा। तो सभी त्यौहार जो है अपने ही मौसम में आएंगे। कालगणना कुछ इस तरह से है, महीने साल पल क्षण जो है वो अपने समय पर निश्चित किए गए हैं। राइट, अब आज क्या है, आज है अगस्त महीने की 10 तारीख, जुड़ी है बहुत सारी बातें तो उनका जिक्र आगे चल करके करेंगे। आज के प्रमुख समाचार 10:30 बजे प्रसारित किए जाएंगे आपसे 10 मिनट बाद समझिए, और बहनों भाइयों चिंतन होगा 11 बजे की खबरों के बाद। लेकिन राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द पाउंड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडियन करेंसी, इंडियन रूपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK टुडे गिविंग 128.3 रुपीज फॉर वन पाउंड, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में 128.30 रुपए दिए जा रहे हैं। एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Like a radio.
3: Like a radio.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. One performer.
6: Countless personalities.
4: A whole universe of entertainment.
6: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
2: high appreciation
7: in Dubai.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
9: मॉम, आई डोंट नो what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
10: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
9: So where do we find something like that now?
10: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
11: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
4: Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: स्वागत है आपका लाइका गोल्ड के मनोरंजन प्रोग्राम में। और बहनों भाइयों, वक्त हो गया है खबरों का। और भाई, एक खबर वीकेंड पर काफी चर्चित रही है साउथ ईस्ट एशियंस के बीच, और वो ये है कि मिडल ईस्ट में टेंशन के बावजूद वहां हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के बढ़ती चिंताओं के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफेंस समझौता हुआ है। और भाई, इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है कि कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अरदोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शुक्रवार 60 अगस्त को एक शिखर बैठक की और फिर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर, यूनाइटेड डिफेंस समझौते पर जो है दस्तखत किए। अब इसको क्या कहें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक इस्लामिक नेटो की संभावना को प्रकट करता है, और कुछ कहते हैं कि भाई मिस्र इस त्रिकोणीय समझौते में शामिल नहीं हुआ, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सऊदी अरब को डिफेंस समझौता पाकिस्तान के साथ करने की और भाई टर्की के साथ करने की जरूरत क्या पड़ी है? कौन अटैक कर रहा है? ईरान कर रहा है ना। अब क्या भाई मुस्लिम देश एक होंगे या मुस्लिम देश आपस में भिड़ेंगे, कौन किससे टकराएगा? अब ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं समझौते के बाद। और भाइयों भाइयों, क्या क्या है आज के प्रमुख समाचारों में, लेट्स फाइंड आउट। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ रोमन गाफमैन ने अपने दो सीनियर अफसरों को उनकी पोस्ट से हटा दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों अधिकारियों ने ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने का कथित प्लान तैयार किया था, जो नाकाम साबित हुआ। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए अधिकारियों में से एक दिसंबर 2015 से मोसाद के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख था, जबकि दूसरा अधिकारी एजेंसी के ईरान मामलों से जुड़े विभाग का चीफ था। भारत से आने वाली खबरों में झारखंड चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा मार्च के बीच पुलिस ने रोका तो क्या होगा, स्टूडेंट लीडर ने जवाब दिया। छात्र नेता रविंदर पासवान कह रहे हैं कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी उन्हें रोकेगा वे वहीं बैठकर प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन भाई उसी तरह चल रहे हैं जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हुए। ये झारखंड राज्य में परीक्षाओं में धांधली को लेकर के उनका विरोध किया जा रहा है। आगे और भी ये खबर जो है शामिल करेंगे। क्रिकेट की एक खबर है, श्रीलंका टेस्ट सीरीज में जगह मिलने के बाद सरफराज खान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैच की टेस्ट सीरीज से साई सुदर्शन बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आए हैं सरफराज खान, भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं। सरफराज खान ने कल संडे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने दो तस्वीरें साझा की जिनमें वो टीम इंडिया की ट्रेवलिंग जर्सी में नजर आ रहे हैं। सरफराज ने इसके साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ इमोजी का इस्तेमाल किया जिसमें भारतीय झंडे की इमोजी भी शामिल है। चीन में तूफान डॉल्फिन ने दी दस्तक, 10 लाख से भी ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। चीन के पूर्वी हिस्से में यह तूफान आया है। तूफान के चलते राजधानी शंघाई समेत कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक डॉल्फिन तूफान ने संडे की शाम करीब 5:30 बजे झेजियांग प्रांत के युहान में पहली बार दस्तक दी और इस दौरान तूफान की मैक्सिमम जो स्पीड थी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई गई है। हमास ने अमेरिका से क्या कहा है सुनिए। एक सीनियर ऑफिसर ने अमेरिका से इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने की अपील की है ताकि गाजा पीस प्लान के अगले चरण को लागू किया जा सके। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर बासेम नईमी ने एक एएफपी न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि अमेरिका इस समझौते का गारंटर है। ऐसे में उसे नेतन्याहू और उनकी सरकार पर पीस प्लान के रेड मैप को लागू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। और भाई एक बार फिर से झारखंड की खबर, जहां भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं यानी धांधली के खिलाफ स्टूडेंट्स आंदोलन 17वें दिन में एंटर कर गया है। आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स ने आज सोमवार को विधानसभा मार्च का आह्वान किया है। मार्च को देखते हुए रांची में सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। झारखंड पुलिस ने शहर के प्रमुख इलाकों में पर्याप्त संख्या में काफी तादाद में पुलिस बल तैनात किया है। आगे भी जो कुछ होगा उसकी खबर अगले समाचारों में आप सुन पाएंगे। फिलहाल आज के प्रमुख समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। भाई अब खबरों के बाद फिर से संगीत की तरफ लौट आइए और सुनिए लता मंगेशकर। लता जी भाई हमारी इस सप्ताह की आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, और मैं कह रहा था आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम को आप आर्टिस्ट ऑफ द वीक बना रहे हैं। बोले जी वैसे तो लता जी की आवाज गूंजती रहती है, लेकिन इस सप्ताह खास तौर पर दबे छुपे ढूंढ कर ऐसे गीत लाएंगे जो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग।

0: साउथ हॉल ट्रेवल का एक संदेश है, लेकिन साथ ही हमारी अलका शाह का भी एक संदेश जो है दूसरे फोन पर जो है गूंज रहा है, तो वहां वो वहां बाद में पहले आपको बता दें कि साउथ हॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. मतलब दुबई का प्रोग्राम बना लो, कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs सिर्फ 13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ 1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ 29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 से शुरू और Herdsman Butter Ghee 20 kg सिर्फ 10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start

0: सजा ही सही, पर खता तो बता दो। लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गीत, भाई दूसरा रूप है फिल्म दो कलियां की इस गीत का। रवि साहब की बनाई ये धुन अमर है।
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV. I hope mission hai na hum log

0: with you till 1 o'clock this afternoon. बहनों भाइयों, इस समय आप चिंतन सुना करते हैं, थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसके लिए आलेख आज मिसेस सारा पटेल ने भिजवाया अलका शाह के हाथों। और भाई सारा जी कहती हैं कि आज मेरे स्वर्गीय पूज्य पति देव का जन्मदिन है, भले ही वो दुनिया में नहीं है पर हमारे दिल में है और हम आज भी उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। जब से बिछड़े हैं हम उन्हें अपने साथ महसूस करते हैं। तो भाई धर्मज गुजरात में जन्मे स्वर्गीय अरविंद कुमार पटेल जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता है उनका परिवार। 70s में युगांडा से आए थे। सारा कहती है बहुत मिस करती हैं उनकी बेटी, उनके दामाद नाजिल, उजी भाई और बेटा और बहू अमन और पुण्य और आयरा अमायरा ग्रैंड डॉटर्स एंड आशु एंड कोकी, दे मिस हिम अ लॉट। फ्रेंकली स्पीकिंग ही वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड, आई मिस हिम एज वेल। थैंक यू अलका जी। और उनके जन्मदिन पर तोहफे के रूप में भाई हम अरविंद जी को संतों का आशीर्वाद दिलवाने जा रहे हैं। कहते हैं कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि गंगा खुद बह करके पश्चिमी देशों के तट को छूने के लिए निकल आती है। एक समय था जब संत महात्मा समुद्र पार यात्रा नहीं करते थे, लेकिन अब तो भाई संत ही नहीं, संतों का समाज, संत संसद अब बड़ी क्या कहते हैं कामयाबी पूर्वक यहाँ चल रही है। और उसी संदर्भ में हम इनवाइट करते हैं टेलीफोन के रास्ते आज के चिंतन में संदेश के लिए परम पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी, और उनके साथ मुझे विश्वास है कि पूरा संत समाज बैठा होगा वहाँ, वहीं से। तो आइए उन्हें स्वागतम कहें। नमस्कार राज राजेश्वर गुरु जी।
1: नमस्कार रवि जी, की आवाज सुनकर के लोगों में चेतना आ जाती है, जैसे चाय का कप लेकर के बैठते हैं ना, ऐसे लोग सोचते हैं कि रवि जी का आवाज कब सुने और जीवन में चेतना आ जाए।
0: आज के चिंतन में आपका स्वागत है और स्वागत है सभी संतों का भी। बड़ी बड़ी महान विभूतियां यहाँ ब्रिटेन में पहुंची हुई है और ब्रिटेन जो है तीर्थ स्थान बन गया है जब से संत आए हैं और उनका जो है संदेश गूंज रहा है। कहिए संत संसद का अभिप्राय क्या और कहां तक पहुंची है बात?
1: संसद बहुत भव्यता दिव्यता से हुआ हमारे पूज्य तलोचन दास जी के सानिध्य में। अभी आज से आज पहला भूमि पूजन सिद्धाश्रम का जो जगह हमने कारपा की ली थी, आज 2:30 to 3 से संत वहां पधारेंगे। संतों के हाथे से यज्ञ होगा, पूजन होगा और आज विशेष 7 to 9 पांडुगढ़ सरकार का दिव्य दरबार होगा, वो जो पहली बार इंग्लैंड में। और दिव्य आज संतों के माध्यम से और पूज्य रामदेव जी स्वयं बोलते हैं कि पांडुगढ़ सरकार का दरबार है पर्चा, यानी कि 100% तो आज संतों सानिध्य में, संतों के सानिध्य में समाज के लाभार्थ के रूप में हमने पांडुगढ़ सरकार का दिव्य दरबार सिद्धाश्रम में शाम को 7 to 9 रखा है और 2:30 to 3 हम भूमि पूजन करके सबका, जितने भी दर्शक जितने भी श्रोता और सुन रहे सबका हम सिद्धाश्रम की ओर से स्वागत करते हैं। इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, यही इनविटेशन लाइका रेडियो के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। सबका स्वागत और भव्य स्वागत सिद्धाश्रम करेगा।
0: अभी पिछले 3 से जो कार्यक्रम, पहले तो अब हम श्रोताओं को बता दें कि ये 6th संत संसद है। जैसे देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट होती है तो समाज को चलाने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए और भाई कुछ नियम को, संयम को, मर्यादाओं को जो है सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए ये संतों ने संसद जो है आयोजित की है। ये 6th संत संसद है यहाँ ब्रिटेन में जिसका आयोजन हुआ है और इसका श्रेय जैसे जो भागीरथ प्रयास इसके पीछे हैं वो हमारे राजराजेश्वर गुरुजी के हैं और परम पूज्य संत जो हैं दास परंपरा के संत त्रिलोचन दास जी महाराज, जिनके यहाँ आइवर में और उसके बाद डडली बर्मिंगम में और ईस्ट लंदन में पवन शर्मा के द्वारा आयोजित बहुत बड़े स्तर पर बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सुना संतों का प्रवचन, दर्शन का लाभ प्राप्त किया। तो राजेश्वर जी आज क्या होने जा रहा है?
1: आज है सिद्धाश्रम की भूमि पूजन।
0: हाँ हाँ, वो
1: 3 से लेकर फिर 7 to 9 है हमारे दरबार रहेगा, दिव्य दरबार हमारे पांडुगढ़ सरकार का। और 14 तारीख को सन संसद पुनः हैरो लेजर सेंटर में होगा, जहां नृत्य से पूरे स्वागत होगा, जहां हमारे गुजरात की परंपरा सा डांडिया होगा और सन संसद होगा, संतों के माध्यम से मंथन चिंतन एवं विविध सूचनाएं विविध मार्गदर्शन होगा। सभी का मैं स्वागत करता हूं, रवि जी आपका भी स्वागत करता हूं।
0: थैंक यू वेरी मच राजेश्वर जी। आई थिंक दैट विल बी द समापन समारोह, ये अपना 7 दिन का या 10 दिन का जो कार्यक्रम है ये उस दिन संपन्न समापन होगा उस दिन। हाँ जी,
1: उस दिन समापन और उस दिन विशेष संतों को एक अवार्ड सेरेमनी भी है, जहां होम ऑफिस पुलिस और सभी को भी वहां सम्मानित किया जाएगा। वहां एमपी भी रहेंगे, काउंसिलर्स भी रहेंगे, मेयर भी रहेंगे, विविध क्षेत्र के मेयर भी आ रहे हैं। तो ऐसी दिव्य संसद में, और वो टाइम जो है रवि जी 5 से 8 है, 14 अगस्त को।
0: नोट कर लीजिए भैरव भाइयों, 5 अगस्त को, सॉरी 5 बजे से 8 बजे तक, 14 अगस्त को। और ये 14 अगस्त को उस कार्यक्रम में काफी धूमधाम रहेगी, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जो सनातन से जुड़े होंगे, उसमें नृत्य गीत संगीत और बहुत सारे विभिन्न महापुरुषों के दर्शन और प्रवचन तो होंगे ही, लेकिन राजनीतिज्ञ और दूसरे प्रमुख लोग काउंसिल से वो भी वहां पहुंचेंगे। राजेश्वर जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू मेंशन? और
1: मैं तो सभी को स्वागत करूंगा कि इतने लोग टिकट लेके भारत जाना पड़ता है संतों के दर्शन के लिए, तो ये सभी कार्यक्रमों में संतों के दर्शन के लिए संत स्वयं ब्रिटेन में आए हैं, तो आप सब पधारिए, स्वागत कीजिए, उनका दर्शन कीजिए और सनातन धर्म के साथ देकर के सनातन धर्म की विजय की सहायता दीजिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जगना ही। ये सुख प्राप्त करने के लिए भानु भाइयों आपने नोट कर लिया है कार्यक्रम, मैं फिर भी दोहरा दूंगा, लेकिन आज के चिंतन में ये यूं समझिए कि संतों का आशीर्वाद और प्रसाद पहुंच रहा है आप तक, इसे ग्रहण कीजिए, इनविटेशन है। तो मैं बता दूं आपको कि कल के कार्यक्रम में बॉब ब्लैकमैन पहुंचे थे और भी कई जो है राजनेता उसमें 14 तारीख वाले कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। आज भूमि पूजन पर भी काफी रौनक रहेगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई पहुंचिएगा।
1: एक चीज बताऊं, कल हम पहली बार ब्रिटिश हिस्ट्री में संतों के संग सुंदरकांड ब्रिटिश रिवर थेम्स के बोट में करने जा रहे हैं हम लोग।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आप जो है कल थेम्स को गंगा जी बनाने जा रहे हैं?
1: गंगा जी बना चुके हैं अप्रैल में।
0: हाँ, अप्रैल में भाई ये गंगा जल लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में और बोट के माध्यम से बीच धारा में थेम्स के जाके और हनुमान चालीसा गाते हुए और मंत्रोच्चारण के साथ वो जल गंगा जल जो था वो थेम्स के जल में मिलाया था। हाँ जी
1: जी, 25 लीटर। आप भी उपस्थित, आप भी साथ,
0: मैं भी था आपके साथ जी। हाँ, और मैं रहूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर के भारत यात्रा नहीं कर पाते थे कोई मजबूरी किसी कारण से, तो भाई उन्हें बता दें कि गंगा जल थेम्स में मिला हुआ है और आपकी गंगा यहाँ आ चुकी है, संत यहाँ आते हैं, सत्संगियां होते हैं, मंदिर गुरुद्वारे यहाँ है, तो यहाँ हमने एक भारत बसा रखा है। आप देखिए, मैं संतों को दिखाइए, दर्शन कराइएगा।
1: सबका स्वागत करता हूँ रवि जी, पुनः बोल देता हूँ कि आज शाम को 7 से 9 जो है पांडव का सरकार धाम का जो दरबार है, दिव्य दरबार है, मार्गदर्शन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, शांति मिलेगी और जीवन का मर्म मिलेगा, सबका स्वागत करूंगा। और 14 सारी रवि जी पुनः आप बता देना।
0: मैं याद दिलाता रहूंगा लोगों को, और भाई विशेषकर कल का कार्यक्रम जो है वो विशेष लोगों के लिए है या वो उसके लिए भी खुला आमंत्रण है, क्योंकि उसमें तो लिमिट होती है, लिमिट होती है।
1: आज दिव्य दरबार है और भूमि पूजन है, कल जो है बोर्ड का कार्यक्रम, उसमें लिमिटेशन जो है
0: थोड़ी, क्योंकि संख्या लिमिट होती है,
1: चुके हैं, मगर 14 तारीख को सब
0: खुला आमंत्रण
1: हैरो लेजर सेंटर में। हाँ, शाम को 5 से 8।
0: अच्छा, ये बायरन हॉल में होगा ना, हैरो लेजर सेंटर में,
1: जहाँ हम पिछले 20 साल से नवरात्रि कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राज राजेश्वर गुरु जी, और आपके साथ संत में अब मैंने सुना मुनि जी आए हुए हैं, भाई उनकी मधुर वाणी से, उनकी दिव्य वाणी से अगर आशीर्वाद के 2 शब्द मिल जाएं तो ये हमारा स्टूडियो जो है ये मंदिर बन जाएगा और ये पूरा हमारी जो बिल्डिंग है।
1: मेरे साथ मुनि जी अभी नहीं है कोई कार्यक्रम, मगर मेरे साथ पांडव का सरकार है।
0: अच्छा,
1: तो पांडव का सरकार की 2 वाणी सब सुन लीजिए।
0: पांडव का सरकार जी आशीर्वाद दीजिए, भाई आप तो त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देते हैं, 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ जी,
1: जय श्री राम, जय पंडुका सरकार, समस्त बिलाद लंदन के सभी भक्तों को पंडुकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। विज्ञान के युग में भी आज भी अध्यात्म बहुत भारी है और साधु संत ऋषि महर्षि भगवान राम कृष्ण की भूमि भारत भूमि है और उनकी कृपा से मैं आज यहाँ आया हूँ। निश्चित ही है कि सबके लिए जो भी मार्गदर्शन होगा आध्यात्मिक और पौराणिक और वैदिक जो भी उपचार होंगे वो मार्गदर्शन देकर सबके लिए मार्गदर्शन करेंगे और आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद
0: मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैंने भाई एक बार फिर याद दिला दूं कि संत संसद के जो विशाल कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं तो उनके बारे में आज कल और 14 तारीख को समापन समारोह में जिस जितना बन सके जिस संख्या में आप जरूर जाइएगा और पुण्य के भागीदार बनिएगा। और भैरव भाइयों ये था आज का चिंतन और ये भजन के साथ समापन करेंगे। जन बिना चैन नाय राम।

अरे भाई याद दिला दूं आपको कि आज का चिंतन जो है वो अलका शाह के माध्यम से भाई हमने जो है सारा पटेल ने भिजवाया था। उन्होंने आग्रह किया था कि हम संत वाणी सुनवाएं, हमें साक्षात संतों के भाई वचन मिल गए, आशीर्वाद मिल गया, और ये जो आज का चिंतन है समर्पित टू श्री अरविंद कुमार पटेल जी। स्वर्गीय पटेल साहब का आज जन्मदिन पड़ता है, उनके सारे परिवार की ओर से और हमारे लाइका परिवार की ओर से भी भाई हम उस पुण्य आत्मा को श्रद्धा से याद करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ये था आज का चिंतन। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।

मुंडा ते तैयार है पर अपने भरावां नूं समझा लै ना पहलवान भरा रखे हुए ने इधर मैं अख मारा उत्थे ओ जूते ला लैने दे

0: ఉండబారి చిక్కలోకే అక్కమాని
1: దసవి ఎన్ని వడ్డీ నీళ్ళు రక్కే హోయే నీ కాటే వాస్తే నీ అక్కా కాటే వాస్తే మిలియా బారి చిక్కలోకే అక్క మారని చేయి बैक टू बैक संगीत सुनवा रहे थे हम आपको भैया लाइका गोल्ड रेडियो है गोल्डन गीतों का खजाना गुरुदास मान और साथियों की आवाजें। हाँ तो वो जो ऑस्ट्रिया से मैसेज आया है वो कह रहे हैं जी अचानक वहां पंजाबी गीत बजने शुरू हो गए तो भैया आपका कोई गलती से और रेडियो लग गया। कई बार ऐसा होता है कि बजते बजते रवि शर्मा गायब हो जाता है और कोई और आ जाता है। मुझे नहीं पता ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है तो मैं आपकी शिकायत जो है कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आप सुनते रहिएगा। अगर कभी खो जाए रवि शर्मा तो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इज नॉट वर्थ लूजिंग आई टेल यू। थैंक यू वेरी मच। और बहन भाइयों गीत संगीत किए महफिल में आगे बढ़ते हैं, आपको एक और गीत सुनवाते हैं और ये गीत स्पॉन्सर्ड है।
2: This is Leica Radio across the Midlands.
3: ये है
2: Leica Radio. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: The one and only one, Ravi Sharma. On your number one radio. So

0: गया।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और बहनों भाइयों, हमारे नए पॉडकास्ट का जो नया एपिसोड है हमारी पोस्टकार्ड का नंबर 28, इट्स अवेलेबल नाउ, आप जरूर देखिएगा। टॉपिक है, इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप? बड़ा गंभीर विषय है, बहुत लोग विश्वास रखते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी। अब आज हम बात कर रहे थे जो उनसे राज राजेश्वर जी से, तो उनके यहाँ आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इस पर, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर चाहते हैं डिस्कशंस कि भाई इसका बताइए कुछ होता है इससे या सब खाली तीर तुक्के वाली बात है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि शायद अगर भाई सही जानकारी दी जाए, जन्म स्थान की, जन्म दिन की, जन्म समय की, तो शायद प्रिडिक्शंस सही होती हो। लेकिन आपका क्या ख्याल है ये देखिएगा। हमारा ये जो पॉडकास्ट है इज लाइक एक्स्ट्रा अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika
5: Radio. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Leicester Falcon Cash and Carry festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni rice 20 lbs sirf 13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 9.10 se shuru aur Herdsman Butter Ghee 20 kgs sir 10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West, Leicester LE1 2JU, and 2A Rollout Cell, Leicester LE5 4UN.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai. Start to

0: कुछ ऐसी गीत हैं भाई जिन्हें आप सदाबहार कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं। किशोर दा की आवाज में ये गीत फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, उससे हमने सुनवाया और कितने बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं बड़ा नया लगता है, ताजा लगता है। तो सब इस तरह के गीत आपको लाइका गोल्ड पर ही सुनने को मिलते हैं। और अब करेंसी रेट्स।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं इंडियन करेंसी में 128.64 रुपीस, पाकिस्तानी 373.98, श्रीलंकन रुपए 452.07, बांग्लादेशी टके 166.72 और अफगान अफगानी 88.46।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Like a radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Like a Radio.
0: सोना महंगा हो गया भाई। The gold is trading at the rate of 103.55 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
7: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.

दिलीप सेन, समीर सेन, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। और जब भाई उन्हें आवाजें मिले अलका याग्निक और कुमार सानू जैसी, तो फिर इस तरह के गीत बनते हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग छत पे जा चढ़ते हैं। ऊंचे इतने क्या करें, सीडी लगा के सुनने पड़ते हैं।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: और भाई ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक, खबरों के उस पार कार्यक्रम।

0: बैक टू बैक संगीत सुनते हुए प्रोग्राम के तीसरे घंटे का आगाज हमने किया भाई। प्रोग्राम का ये अंतिम दौर आरंभ हो चुका है। माय नेम इज रवि शर्मा और ये मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ। 12:15 बजे चाहते हैं ब्रिटिश घड़ियों में। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, लेट मी रिमाइंड यू दैट यू हैव मिस्ड मोर देन 2 आवर्स प्रोग्राम। चिंतन 11 बजे, खबरें 10:30 बजे, भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप मिस कर जाते हैं अगर आप रेडियो साथ नहीं रखते हैं। तो साहब जुड़े रहिएगा। अब 24 आवर्स 7 डेज लाइका रेडियो नेटवर्क के जो रेडियोज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। चाहे आप मैनचेस्टर में हो, आप मिडलैंड्स में हो, आप लंदन में हो, या दुनिया में कहीं भी हो, हमारे कार्यक्रम आप तक पहुँचते हैं और आपके साथ हम जुड़ते हैं। तो ये मनोरंजन कार्यक्रम आप लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश यहां आकर के चिपक गए हैं भाई हमारे स्क्रीन पर। शांताबेन दीपक कहती हैं कि जय श्री कृष्णा रवि जी, आज हमारे बेटी दीपक का बिग बर्थडे है। ही इज स्वीट 55 ईयर्स यंग। क्या बात है, गॉड ब्लेस हिम, लॉन्ग लिव भाई। क्या नाम है आपके बेटे का? दीपक। तो दीपक जी जगमगाते रहिए, रोशनी फैलाते रहिए। फ्रॉम मकवाना एंड मारू फैमिली एंड एवरीवन इन द फैमिली, दे लव यू। लाइका गोल्ड रेडियो पर भी सबकी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और किसका क्या भाई जन्मदिन है? नरेंद्र पंचाल जी आपका संदेश मिला, थैंक यू। नैना शाह बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला जी आपको गीत पसंद आया, आपने नाम कर लीजिए। महेंद्र बजारिया साउथ हेरो में। अर्जन जी सो नाइस ऑफ यू। सुनीता शर्मा वत्सला लिखती है, भारत की भूमि तपोभूमि है, पावन पवित्र भूमि, इन्हीं संतों के कारण जिनका जिक्र आपने चिंतन में किया। जगदीश जी बुशी में सुन रहे हैं, पमी स्लाव में। जैस्मीन शी सेज हैप्पी मंडे आपको भी जी। और नीलम, नीलम आपने ये गीत की फरमाइश लिखी है क्या, कॉलेज गर्ल, या अपना परिचय दे रही हैं आप? थैंक यू वेरी मच नीलम जी। हंसा बोरा, भरत गंगाराम, शोभना राय, हिना भाई, आप सब संदेश भेजते हैं सर आंखों पर, और आपकी जो फरमाइशें हैं या तो हम पूरी करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई अब जिस जिसकी फरमाइश पूरी हो जाए तो यूं समझ लेना कि वो आप ही के लिए गीत बजा था आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आगे बढ़ते हैं और आपको पाउंड का रेट बताते हैं SBI की ओर से। भारतीय रुपए कितने मिल रहे हैं आज पाउंड के बदले?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, for £1 they are giving 128.3 Indian rupees today. SBI UK, State Bank of India UK. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Kia Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Be part of a historic grand opening.
0: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
4: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
0: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
4: Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
2: Artist of the Week. मैं कह रहा था कि भाई जो आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम हो सकती हैं, मैं कहूंगा दुनिया से जाकर भी लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में, लोगों की श्रद्धा में, लोगों के प्रेम में जीवंत हैं, शाश्वत हैं, वन एंड ओनली लता मंगेशकर.

ये स्पिरिचुअल वॉइस, ऐसी दिव्य आवाज, दिव्य स्वर भाई, ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर की कृपा से कोई अमृत धारा बरस रही हो। आपको बता दें कि लता जी ने सभी जो है मेल गायक कलाकारों के साथ अपनी आवाज मिलाई, कितनों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। आई थिंक इनके एक वो अरेंजर थे, वो बता रहे थे, मैं जब इंटरव्यू कर रहा था, कहते हैं कि हम अगर जरा से भी सुर से भटकने लगे तो लता जी कुछ कहती नहीं थी, बस चश्मा हटा के थोड़ा सा टेढ़ी नजर से देखती और हम एकदम सावधान हो जाते क्योंकि इशारा समझ जाते थे सब। सुरों की देवी, शारद पुत्री, लता मंगेशकर।

0: लता जी के साथ ये स्वर था सुरेश वाडकर का। याद दिला दें आपको भाई, लता जी हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक। बहुत सारे गीत आपको ऐसे सुनने को मिलेंगे तो शायद बहुत देर पहले सुने हो या आपने, या सुने ही ना हो, तो भाई बस सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क पर, लाइका गोल्ड। और साहब अब हमारे पास एक संदेश है। क्या संदेश है भाई, खुल नहीं रहा ये, खुल जा सिम सिम। हाँ संदेश भाई ये है कि उदित नारायण और आदित्य नारायण लाइव परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो।
1: दिस इज लाइका रेडियो।
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: ये सावन शब्द वाले सारे गीत आज ही बज जाएंगे क्या? पूरा महीना बजाने हैं भाई। कंप्यूटर ऐसे सेट करके रखता है गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फरार फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। और कैसा लगा बहनों भाइयों? कौन सुनवा रही थी हम बता देते हैं। Holiday breaks are brought to you by South Old Travel. साउथ ओल्ड ट्रेवल का संदेश भाई, FCDO ने वो जो अनाउंसमेंट कर रखी थी ना, कहते हैं कि दे आर प्लीज टू टेल दैट हैज बीन लिफ्टेड। उसमें ये था कि भाई जो जरूरी हो तभी आप दुबई की यात्रा करें। अब कहते हैं ना जी, सभी दुबई की यात्रा करें, जब मर्जी करें। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटेटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 at all protected. Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. ये है
1: लाइका रेडियो। लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99। फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE5 4UN।

हीरो को ये भी नहीं पता कि ये गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, अगर ये गुड मॉर्निंग कहे तो आप उसे आफ्टरनून ही समझना।

जाते जाते रुलाने का इरादा है शर्मा जी, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बेटी तो है धन ही पराया, साथ अपने कोई कब रख पाया।

0: Days for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
2: वो थी बात एक रात की, 1962 की फिल्म जो थी. एस डी बर्मन का संगीत था और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स थी. हम कभी कभी सुनते हैं हेमंत दा की आवाज़, तो हमें लगता है कि हेमंत कुमार ही म्यूज़िक डायरेक्टर होंगे उस फिल्म के, लेकिन बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हेमंत कुमार जी को गवाते थे, स्पेशली कल्याण जी आनंद जी, फिर एस डी बर्मन आर टू ऑफ द मेन वंस दैट आई डू नो ऑफ.
3: वन परफॉर्मर
4: के सामने तो प्रोसेस से कहते क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
5: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
6: जिंदगी बर्बाद हो गया.
7: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट.
8: लंदन में फंक्शन रखा हुआ है.
9: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
7: 29th अक्टूबर ओवर अरेना वेम्बली लंदन, 31st अक्टूबर मैटियोली अरेना लेस्टर.
9: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस, एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर live on stage in the UK.
7: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
9: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
10: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 rupees से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
11: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
12: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
13: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
7: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.
14: History divided a nation but could never divide humanity.
15: Kaun si azadi aur kiska mulk?
14: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
16: Woh maa hai maa. Maa ko Hindu Musalman mein na baatiye.
14: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
16: Aur bacche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
14: Produced by Aamir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
17: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: Lester Mella is back.
19: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
18: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
19: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
18: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
19: Arts Council England.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: It's summer on the Leica Radio Network.

0: बदलते रिश्ते.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3492. Indian rupees 128.59. Pakistani rupees 374.7. Afghan afghanis 88.37. Kenyan shillings 174.56. And Mauritian rupees 63.40.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £103.33 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
4: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट. बाली ब्रह्मभट्ट इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, योर ट्रस्टेड नेम फॉर दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी एंड सो मच मोर. अवेलेबल नाउ एट योर नियरेस्ट एशियन शॉप्स. जैमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
5: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी. स्टार्ट्स 15th ऑफ ऑगस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी.
6: आई होप मेरे नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे.
7: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
8: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar, and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
8: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at

0: राजेश रोशन का संगीत एंड द ब्यूटिफुल फिल्म. जे ओम प्रकाश वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड राकेश रोशन के फादर इन लॉ. स्टारिंग रजनीकांत, राकेश रोशन एंड राजेश रोशन का संगीत, श्रीदेवी, टीना मुनीम. एंड दिस सॉन्ग संग ब्यूटिफुली बाय किशोरदा. ये गाना पिछली बार सुनाई दिया था 8 मार्च को 2024 में. दैट वॉज ऑन लाइका गोल्ड, 2 पहले. एंड आई एम वेरी प्राउड टू रिवाइव इट टुडे. नेक्स्ट गाना है फिल्म छलिया का. दैट्स मुकेश और वनी जयराम.
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: आरडी बर्मन का संगीत, मुकेश जी और वनी जयराम. फिल्म छलिया 1973 की छलिया फिल्म. नेक्स्ट आवर देयर वाज अ मिस्टर शाह हु रिजेक्टेड लता मंगेशकर वॉइस.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store Mega Blockbuster Dhurandhar Mega Blockbuster Dhurandhar 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold Title sponsor Watchdog Security Associate sponsor Lemfi
2: Leica Radio Network Proud hospitality partner Ragasan
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
4: इट्स अ डॉग वॉक I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
5: Hey, boy!
6: Coast Guard, we're stuck.
7: Okay, help's on its way.
6: Hold on, mate.
8: Shoes tied. Phone.
9: Back before dark, love. Okay.
10: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: History divided a nation, but could never divide humanity.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
3: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
1: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
3: और बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
1: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
2: पंजाबी
1: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 0208-574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Radio.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
0: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
4: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
3: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
4: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel of Awarapan 2.
3: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं।
4: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपन Protected. Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham this October. For sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
7: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
8: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: Like a radio.
12: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.